स्टडी एब्रोड जुनसुक विषय में उच्च शिक्षा का लागि अस्ट्रेलिया यूएसए यूके कैनेडा न्यूजीलैंड हजुर को गंतव्य विश्वासिलो र भरपर्दो शैक्षिक परामर्श केन्द्र बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा संपर्क बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा चार सिद्धार्थ चोक फोन नम्बर 0165707636 98560-2325 98086-35480 साथै आईएलएस पीजी का कक्षाहरू विशेषज्ञ टोली र गुणस्तरीय तालिम का साथ प्रदान गरिन्छ।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850012046 9850012504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पो।

मलाई हस्पिटल लिएर जाने डेट त याद भएन तिमीलाई। बाबुलाई स्कूलबाट लिएर आउन चाहिँ नबिर्सिनु है। छोराले खाना खायो? बाबुले खाना खायो भनेको सुनेनौ?

भागवत तेसरो स्कंद को पांचो अध्याय को दूसरो श्लोक वेद अभ्यास जी ने स्पष्ट पारी दिए भागवत में जति पनि लोकहरु छन् ब्रह्माण्डमा हरेक लोक का जीवात्मा हर समय क्रियाशील छन्।